सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: जदों लग्या तेनू इश्क दा रो

0: Cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग रिका उस्तारा रिका स्टारारी रा कुकारू रिका उस्तारा रिका स्टारारी रा कुकारू।

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: दिलजीत दोसांझ और सचेतन परंपरा टंडन की आवाज में इश्क द चेहरा फ्रॉम द मूवी बॉर्डर 2 ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा गिरी जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जन। सितंबर 17th थर्सडे का दिन, खुश तो बहुत हो गए तुम है, मैं भी बहुत खुश हूँ, आप भी खुश है तो बढ़िया है यार। दिन तो एकदम मजेदार जाने वाला है। अगर इस एनर्जी के साथ हम शुरू कर रहे हैं तो क्या ही बॉर्डर कर सकता है जीवन में, नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकता। एकदम मस्त हमारा आज का थर्सडे जाने वाला है और फिर एकदम बढ़िया वाला वीकेंड भी होगा।
2: मिला तुझे तो ये लगा, क्यों ना तुझे पहले मिला।
1: दिस वन्स फॉर वीकेंड।

सरगम की आवाज में ये आइकॉनिक गाना और साथ में ये भी है यार मूवी तो कमाल थी साथ में साउंड ट्रैक पूरा का पूरा

0: हिमेश एट इट्स पीक राइट, क्या गाने बना रहे थे, क्या म्यूजिक बना रहे थे।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: And all these amazing tracks are lined up for you in this hour. और ढेर सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन आपको पता है ना सबसे पहले क्या होता है, आपके messages। जी हाँ, so फटाफट से गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दो मुझे 3311063 पर, जहाँ भी जा रहे हैं, अगर आप काम के लिए ऑलरेडी निकल चुके हैं और रेडी हो रहे हैं और थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं एक छोटू सा गुड मॉर्निंग भेजने के लिए, तो बढ़िया रहेगा, मेरी भी मॉर्निंग बन जाएगी यार। And to people who are driving their kids to school, drive safely. And a very good morning to all the kids out there who are listening to me right now. I hope you have an amazing day today. Phir to chit.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: Olive Sono Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
7: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस दिन निशा को बिंदास मॉर्निंग में.
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
9: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: Tanisha.
1: विशाल मिश्रा और प्रतीक्षा की आवाज में आप जैसा कोई मूवी से ब्यूटीफुल ट्रैक, बड़ा ही ऐसे सटल सा स्वीट सा प्यारा सा गाना है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 6.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड मैसेजेस पर लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़े से। समथिंग इज हैपनिंग विद माई स्पीच, नहीं ऐसे या तो मैं वर्ड्स खा जा रही हूँ या फिर मैं कुछ और ही बोल जा रही हूँ, तो कुछ तो चल रहा है दिमाग में, टैब्स खुले हुए लग रहा है, मुझे बंद करने की ज़रूरत है। वैसे नाजनी जी का मैसेज आया यहाँ पे, मे ईच एंड एवरी मॉर्निंग फिल योर हार्ट विद हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव वाइब्स, गुड मॉर्निंग। एंड अबरार जी का भी गुड मॉर्निंग है हमारे पास। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया हुआ है, ही हैज सेंट ग्रीन टी का कप और गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे ऑल्सो साथ में। And then we have Zulfi ji, may your day be filled with calm energy, grateful thoughts and opportunities that lead you close to your dreams, believe in the good ahead. Yes, so true. And I am also wishing you a very good morning, you know that. And I am to wishing you a very good day also. Aur koi choti moti baat ho to use dil par lekar nahi baithna, it's okay, ho jata hai. क्या ही कर सकते हैं, 6 सेकेंड रूल याद रखना है, किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले 6 सेकेंड्स का पॉज लो, तब जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन यू विल रियलाइज कि यार इस बात के लिए इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत है भी नहीं जितना मैं करने वाली थी, और ये हमेशा मुझे रिएक्ट करने के बाद ही रियलाइज होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप पहले रियलाइज कर ले तो बेहतर होगा आपके लिए, और क्या। सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: चोर निकल के भागा मूवी से जानिए ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर kind of liking it because right now it is 35 degrees and it feels like 34 to ye to achhi baat hai kam mehsoos ho raha hai and actually when I got out of the house office aane ke liye to it was good it was not like pleasant or amazing or it was not super hot it was good it was bearable wind 6 km per hour ki raftaar se chalegi and aaj ka jo highest temperature hai wo ho sakta hai 44 degrees and lowest 31 so aisa bataya ja raha hai ki abhi aapko acha lag raha hai jaise maine kaha ki abhi badhiya lag raha tha weather par जैसे जैसे आप दोपहर की तरफ बढ़ेंगे तो मामला थोड़ा सा गर्म होने वाला है इट विल बी वेरी सनी वेरी हॉट और काफ़ी ज़्यादा यू नो हीट जो है वो डेंजरस रहेगी दिन की ह्यूमिड इतना ज़्यादा नहीं होगा बट या हीट विल बी देयर सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टे हाइड्रेटेड ठीक है और पानी वानी साथ रखिए अगर बाहर निकल रहे हो तो हो सके तो बाहर ना ही निकले ठीक है स्टे इनडोर्स ऐसा भी बोला जा रहा है सो अपना ख्याल रखें मेरी जान और फ्रेश भेज रही हूँ आपके लिए बड़ा सुंदर गाना दीपाली सहाय आएगी आवाज में तेरे पास मैं वापस आऊंगा मूवी से ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम जियो बिंदास मेरी जान रेडियो

0: दास मॉर्निंग, दास मॉर्निंग हर जीतम निशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: देवडी मूवी से तोची रैना की आवाज में परदेसी, इसका भी साउंड ट्रैक क्रेजी था भाई. एंड दिस मूवी वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम कि उस टाइम पे काफी लोगों को समझी ही नहीं. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा, आपके साथ बिंदा सॉनिक्स चल रहे हैं. अब
1: व्हाट झुमका
0: रानी आने वाली अपने झुमके की बात करने.

This is the weekend vibe I am looking for. Well, I think थोड़ा बहुत गीत हम सबको अपनी लाइफ में होना चाहिए यार. अपना फेवरेट होना तो

0: insan, Raghu, two insan actually, Raghu and Khosla, these people are making such beautiful tracks. And the voice, the lyrics, the music, everything is so beautiful. I think music scene mein badhiya ekdam aise level pe pahunchne wale hai. I think kafi time se music bana rahe hai, lekin fame abhi mila hai. Thanks to Instagram, obviously. Well, now I'm gonna play an iconic dialogue. ठीक है, आपने मुझे बताना है कौन सी मूवी का डायलॉग है और कौन सा एक्टर, कौन से एक्टर्स हैं इस डायलॉग के यू नो पिक्चराइजेशन में. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा.
1: आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो.
0: हाँ जी, तो बताएं कि कौन सी मूवी का डायलॉग है और कौन से एक्टर हैं इस सीन में. 3311106 पर और सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ जी.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Lulu Mega Deals are back. And this time, it's all about bigger deals, better prices and smarter shopping.
2: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
1: 4 days, mega deals, more savings.
2: So get your shopping list ready because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
1: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
3: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: झुमका
1: तनिषा तनिषा
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं. यहाँ पर वर्ड झुमका सुना आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से. भाई मजेदार मूवी थी, मजा आया था मुझे ये देख के. वेल मैंने आपसे पूछा था, एक डायलॉग सुनाया था और पूछा था कि कौन सी मूवी का डायलॉग है.
3: आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू.
2: इतना आइकॉनिक सीन था कि बस एक बार आलू सुनते ही आपको पता है कि ये कौन सा है. एंड आई हैव गॉट सो मेनी आंसर्स ओवर हियर और सबने करेक्ट जवाब दिया. यस, वेलकम इज द मूवी. एंड मुझे कमलेश जी का मैसेज आया, अस्मा मारिया इद्रिस जी ने मुझे बड़ा सुंदर सनराइज का फोटो भेजा है, बहुत ही खूबसूरत था. रहमान जी का मैसेज आया है मुझे, देन देर इज ए पी, देर इज आई एम, ओके, देर इज रीना जी, देर इज लियाकत, मैनी का मैसेज है, श्री इज देयर, मोहम्मद जी का मैसेज है, एंड अ लॉट ऑफ मैसेजेस आर देयर. और सबको पता है कि इट इज़ वेलकम. बट माई ओनली यू नो प्रॉब्लम विद बॉलीवुड इज कि वेन दे मेक सच यू नो अमेजिंग कॉमेडी मूवीज, वेलकम वॉज रियली गुड द फर्स्ट वन ओनली. ओके, जब उन्होंने सीक्वल बनाया वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब से नहीं हो पा रहा है. वो इतना स्ट्रेच कर दिया है, फालतू की कॉमेडी डाल दी है, मतलब नॉनसेंस वाली. वेलकम में भी नॉनसेंस वाली थी बट यू नो हंसी आ रही थी. द टाइमिंग वाज गुड, द कैरेक्टर्स वर अमेजिंग एंड द वे कैरेक्टर्स वर बिहेविंग, इट वाज समथिंग एल्स. लेकिन जब सीक्वल बनाया तब तो भाई बर्बाद ही कर दिया. मैंने नहीं देखी है उसके बाद कोई भी वेलकम अगेन और वेलकम टू द जंगल एंड ऑल दीज, नोप, हो ही नहीं पाया क्योंकि एक बढ़िया मेमोरी थी ना, उसको रहने देना चाहिए. आई थिंक हेरा फेरी के साथ भी इन्होंने यही करा था. आई डिड नॉट लाइक रेस्ट, लाइक टू वाज स्टिल ओके, थर्ड तो पता नहीं. सेंडिंग जबरदस्त हिट और वेल लौट के आती हूँ. एक इम्पोर्टेंट बात करनी है. सेंड रेडियो टू यू बिंदास.
1: अब सुनिए

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं यस दोहा गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा रेट्रो वाइब्स प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट आज ही बुक करें धरोहर मिस मत करना
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

साधना सरगम और उस्ताद सुल्तान खान साहब की आवाज में मकबूल मूवी से जिन मिन जिनी ब्यूटीफुल ट्रैक है ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड फॉर ऑल द पेट पीपल जिनके पास भी पेट्स हैं अपने जो रूल्स हैं एनिमल वैक्सीनेशन के लिए वो काफ़ी टाइटन हो चुके हैं कतर में सो प्लीज़ उसका ख्याल रखें कि आप अपने पेट्स को टाइम टू टाइम वैक्सीनेट करवाते रहें और कभी मिस आउट हो जाए तो ध्यान रखिए उन चीज़ों का बिकॉज इट कैन लीड अप टू 1 year ऑफ जेल प्रिजन जा सकते हैं और 200,000 का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट एंड एनी वे इफ़ यू हैव अ पेट दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन चीज़ों का ख्याल तो आपने वैसे ही रखना है एंड यू नो इट विल हेल्प एनिमल्स में भी इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वो स्प्रेड करने से प्रिवेंट करेगा राइट और पब्लिक हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट और बस मस्त रहो अपने पेट्स को भी मस्त रखो स्वस्थ रखो और सुनते रहो रेडियो ऑलिव सेंडिंग जब भी मैथ से ये इश्क है शेयर विशाल की आवाज़ में जी

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan September 18th, 7 p.m. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: Hi, I'm Sarika.
3: Radio Olive 106.3.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm a number one.
5: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वरुण जैन की आवाज में तेरे वास्ते फ्रॉम द मूवी जरा हटके जरा बचके ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, एंड फोर्ब्स मिडल ईस्ट टॉप 100 ट्रैवल एंड टूरिज्म लीडर्स की लिस्ट में कतर के 3 सीईओस का नाम भी है। जी हाँ, फ्रॉम कतर एयरवेज ग्रुप द ग्रुप सीईओ, एंड देन देर इज विजिट कतार सीईओ, देन देर इज एमडी एंड सीईओ ऑफ अल रियान टूरिज्म इन्वेस्टमेंट कंपनी, एंड दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट। अलॉन्ग विद दैट, विजिट कतर ने कतर कैलेंडर जो है वो लॉन्च कर दिया है, एंड भाई क्रेजी लाइनअप है, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, विजिट कतर एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं जो आपके लिए और इजी कर देगा टू यू नो एक्सेस द इवेंट्स, टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट द इवेंट्स, व्हाटएवर इज गोना हैपन एट वन प्लेस। सो रेसिंग में मोटो जीपी होने वाला है, फॉर्मूला 1 होने वाला है, कतार इंटरनेशनल वाजा इज देयर, एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, T100 ट्रायथलॉन चैंपियनशिप, समला इंटरनेशनल रेस, आयरन मैन, कतर टोटल एनर्जी इज ओपन, एंड देयर इज कतर एक्सॉन मोबाइल ओपन, दोहा मैराथन, वन चैंपियनशिप, फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, देयर विल बी दोहा टैटू फेस्टिवल, मिली पॉल, कतर बोट शो,

0: तन्निशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you're listening to Qatar's top most Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
2: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha aapke saath. 440 volt sunaame Meeka Singh ki awaaz mein Sultan movie se. Bindaas mornings chal raha hai yahan par and Qatar Patient Safety Week 2026 aaj se shuru ho jayega and it will go on for a week. So this is the 12th edition of National Initiative organized by Qatar's Ministry of Public Health and is year ka jo slogan hai wo hai Safe Care for Life. और जो मेन फोकस है वो है सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. तो बेसिकली ये देखा जाएगा कि किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं यू नो प्रिवेंटेबल हार्म एंड सेफ्टी रिस्क जो कि लिंक्ड है टू द कंडीशन सच एज डायबिटीज़, हार्ट डिजीज और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के साथ. ये जो कैंपेन है इट प्रमोट्स बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. इट ऑल्सो एनकरेजेस पेशेंट्स एंड फैमिलीज टू टेक एन एक्टिव रोल इन हेल्थ केयर डिसीजंस एंड फॉलो द ट्रीटमेंट प्लान्स करेक्टली. क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल हमें खुद ही रखना है कितने भी इनिशिएटिव्स आ जाएं, बट जब तक आप अवेयर नहीं होते और आप कॉन्शियस नहीं होते उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर पाएगा. ठीक है. ऑल्सो इट फोकसेस ऑन मेडिकेशन सेफ्टी एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस. द इनिशिएटिव ऑल्सो प्रमोट्स टीम बेस्ड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर इन्वॉल्विंग डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है दे विल रन अवेयरनेस कैंपेन्स अक्रॉस digital and other media platforms. You can keep an eye on that and there will also be online awareness sessions and webinars for healthcare professionals and the public. So wo check out karna chahte hain to ministry ki website par jaiye aur yahan par suniye aane wale gaane.

0: संजू राठौर ने तो क्या क्रेजी कमाल कर दिया है, एक गाना लाए थे और भाई साहब जो वायरल हुए हैं, क्रेजी. ऑल दीज ट्रैक्स आर कमिंग अप योर वे इन दिस आवर, स्टे ट्यून्ड एंड रिमेन विद अस.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Lulu Mega Deals are back, and this time it's all about bigger deals, better prices, and smarter shopping.
1: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
0: 4 days, mega deals, more savings.
1: So get your shopping list ready because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
0: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: Tanisha. Shankar Ehsaan Loy and Hardcore Ki Awaaz mein joining Gaddar se. Move your body, baby. You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal rahe hain. Yahan par bhai crazy crazy trends aate rehte hain aajkal social media pe. Abhi kya trend kar rahe hain pata hai? Abhi wedding sponsorships trend kar rahi hain. So basically, people are just putting it out there ki bhai hamari itni tarikh ko shaadi ho rahi hai. Jo brand aakar hamare saath hamari shaadi ko as a advertisement treat karna chahta hai, aap khul ke So I saw one video yesterday. There was this couple. They're about to get married, and they are talking ki kahan kahan pe wo branding kar sakte hain aapke brand ki. They want makeup, food, venue, decor, everything sponsored. Ji haan. And actually brands are there, like unke comment section mein line lagi hui hai, and they are getting messages from so many brands. So basically apne wedding invitation pe bhi unhone 5 spaces rakhi hai ki yahan aapke brand ka logo aa jayega. ठीक है, तो एक तो ये पर्सनलाइज्ड ब्रांडिंग हो गई, वहाँ जाके प्रमोशन हो गया लोगों के घर पे जाके जब वो इनवाइट करेंगे. दूसरा द ग्रूम, ही सेज कि मेरा जो जो भी सूट रहेगा या शेरवानी, वट एवर आई एम वेयरिंग, उस पर फुल स्पेस है, आपको जिधर अपना लोगो लगाने का है आप लगा दो, आई विल प्रमोट इट. द ब्राइड सेज मैं अपनी मेहंदी में आपका लोगो लगाऊंगी. ये क्या चल रहा है दुनिया में, पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं. आई एम नॉट गेटिंग इट. मतलब वेडिंग इज समथिंग विच शुड बी यू नो इंटीमेट पर्सनलाइज्ड, उसको एडवर्टीजमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकता है कोई? आई एम नॉट एबल टू फैदम विद दिस फैक्ट, बट आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन. इफ एवर कोई ऐसे बहुत अमेजिंग ब्रांड आ गया एंड दे आर सेइंग कि नॉट जस्ट वन, इट कुड बी मैनी ऑल्सो, है ना, आपका कोई भी फंक्शन हो रहा है फॉर दैट मैटर, सपोजिटली सोच लो यार, ठीक है शादी हो भी गई है तब भी, कि सपोजिटली शादी है आपकी और आपके लिए ब्रांड्स स्पॉन्सर करना चाहते हैं, बट दे वॉन्ट कि आपकी शादी में हर जगह ना उन्हीं की लोगोज हो, उनके स्टैंडीज हो, उनकी एडवर्टीजमेंट्स चल रही हो स्क्रीन पे एंड एवरीथिंग, दे वॉन्ट दैट. या फिर आपके ड्रेस वगैरह पे, सूट पे, मेहंदी पे एंड एवरीवेयर, दे वॉन्ट देयर लोगोज, देयर प्रेजेंस. तो क्या आप ये करेंगे? बताएं मुझे, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? वुड यू डू दिस सो दैट आपकी शादी एकदम मुफ्त में हो जाए, क्योंकि ब्रांड इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, और मे बी दे आर पेइंग इट, है ना? सो बताएं मुझे 3311-1063 पर, या फिर कॉल कर दें 4444-1063 पर. सेंडिंग राहत साहब की आवाज में तेरा दीदार हुआ फ्रॉम जन्नत टू. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: हमजा मलिक और जैन साहिब की आवाज में अल्फाज भाई, ये ना एडिक्शन वाली कैटेगरी का गाना है. द यू नो द पार्ट वेयर हमजा मलिक इज सिंगिंग, इट्स मोर वेस्टर्नाइज्ड, एंड व्हेन जैन साहिब कम्स, ब्यूटीफुल लिरिक्स, क्रेजी. आई एम स्टक टू दिस वन, या तेरे पास मैं, दिस वन, देन लॉस्ट इन लव, सो मेनी सॉन्ग्स राइट नाउ इन माई हेड ऑल टुगेदर. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनिषा आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. Wacky wisdom में आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बारे में आपने कभी गौर ही नहीं फरमाया जिसपे. जी, सो वी ऑल वेयर शॉर्ट्स, राइट? सो अगर आपने नोटिस किया हो कभी, आई एम श्योर नहीं किया होगा, जो विमेन्स शर्ट्स होती है ना, उस पे दूसरी साइड पे बटन्स होते हैं और मेन शर्ट पे दूसरी साइड पे. सो मेन यूजुअली हैव बटन्स ऑन द राइट एंड विमेन यूजुअली हैव बटन्स ऑन द लेफ्ट. एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि अर्लियर, यू नो, 18th-19th सेंचुरी में जो विमेन ड्रेसेस होती थी वो काफ़ी इलैबोरेट होती थी और ख़ुद से, यू नो, उनको क्लोज कर पाना, टाई कर पाना मुश्किल होता था. तो सर्वेंट्स यूज टू हेल्प, एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि वो सामने से फेस कर रही हैं वुमेन को, सो द बटन्स वर ऑन लेफ्ट, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू क्लोज देम. पर मेन हैव यूजुअली बिन ड्रेसिंग देम सेल्व्स, सो दैट्स वाई द बटन्स आर ऑन राइट. डजंट मेक सेंस, बट यार, दैट्स अ फैक्ट फॉर यू टुडे. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव पर. Song of the Year.

0: अमनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: रफ्तार की आवाज में दंगल मूवी से धाकड़ ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर।
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
1: सो आज का जो वर्ड मैं लेकर आई हूँ वो है बैनजेक्स्ट, BANJAXED, बैनजेक्स्ट। बेसिकली इट्स अ आयरिश वर्ड, ओके, और अ यूके स्लैंग, और इसका मतलब होता है कम्प्लीटली ब्रोकन, रूइंड, एग्जॉस्टेड या फिर मेस्ड अप। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ़ोन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, नाउ यू डेस्परेटली नीड अ न्यू फ़ोन, यू कैन से माई फ़ोन इज़ कम्प्लीटली बैनजेक्स्ट मैन। और जब बहुत लंबी शिफ्ट होगी काम की, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा टायर्ड एग्जॉस्टेड होंगे, यू कैन से आफ्टर दैट 12 आवर ऑफ शिफ्ट आई एम एब्सोल्युटली बैनजेक्स्ट। एंड आपका जो वीकेंड है वो बैनजेक्स्ट ना हो, रुइन ना हो, उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कल क्या देख सकते हो OTT पे। पापा यार, यस, जाकिर खान का स्पेशल कल आने वाला है, डू नॉट मिस दैट। एंड जब वो शूट हो रहा था और लाइव ही वॉज परफॉर्मिंग, काफ़ी तारीफें सुनी हैं, हिज फादर हैज़ परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ इट। एंड जाकिर खान के स्पेशल तो काफ़ी स्पेशल होते हैं, है ना, सो वो मिस करने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर वीकेंड का कोई प्लान नहीं है आपका तो ये हो सकता है। जी जब होगा तब देखा जाएगा। एट टाइम्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि मैं ये गाने क्यों इन्जॉय कर रही हूँ, फिर मुझे याद आ जाता है कि मैं दिन भर डूम स्क्रॉल कर रही होती हूँ और ये गाने दिन भर आपको रील्स पे नजर आते हैं और आपके दिमाग में अटक जाते हैं।

ये गाना तो कमाल है, इसमें तो काफी डांस करने की भी कोशिश की पर नहीं हो पा रहा था यार. हाँ जी, ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर कमिंग अप योर वे इन दिस आवर. फिलहाल भेज रही हूँ शिल्पा राव की आवाज में जग से लाज फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2. स्टे ट्यून्ड एंड

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: बात मानो, कभी किसी

0: पकार मूवी से कविता कृष्णमूर्ति एंड शंकर महादेवन की आवाज में के सरा ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा है आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और रन फेस्ट 2026 होने वाला है 25th ऑफ सितंबर को. आप इस वीकेंड का स्ट्रेस ले रहे हो, मैंने आपका अगला वीकेंड भी सेट कर दिया है. जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा ये दोहा फेस्टिवल सिटी में नेक्स्ट फ्राइडे को और मस्त इंडोर रनिंग फेस्टिवल है. सो ऐसे वेदर के बारे में स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. एनी वे वहाँ पर यू नो अभी चल ही रहे थे सेशंस हर वीकेंड पर एंड यहाँ पे इस रन फेस्ट में 5 कैटेगरीज होंगी. 10 किलोमीटर रेस, 5 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर फन रन, 1 किलोमीटर किड्स रन. इसमें जो एज कैटेगरी है वो है 8 to 12 years एंड 500 मीटर मिनी किड्स रन जो कि फॉर चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 8. तो वो तो वैसे ही भाग लेंगे, इनके लिए तो क्या ही एक कैटेगरी रखनी है. वेल रेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होने वाली है. यू नो इट विल बी देयर विल बी एन इवेंट विलेज जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स और स्पेक्टेटर्स के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ और लाइव एंटरटेनमेंट का यू नो प्रोग्राम रखा गया है. जो देखने जाना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से एरिया है. एक्सपर्ट लेड वार्म अप सेशंस होंगे और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने यू नो बूथ्स भी लेकर आ सकते हैं लाइक एग्जिबिशन के लिए. इफ़ दे वॉन्ट टू एग्जिबिट सम प्रोडक्ट और एनी थिंग दे कैन कम देयर और विजिटर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. विजिटर्स के लिए भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है. सो बहुत कुछ होने वाला है एंड बाद में पोडियम सेरेमनी होगी जहाँ पे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं दोहा फेस्टिवल सिटी के उनको गिफ्ट कार्ड्स मिलने वाले हैं. और रजिस्ट्रेशन अगर आपको इसके लिए करना है तो आपने जाना होगा रन थ्रू कतर एंड कतर स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन की ऐप पे. वहाँ जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लो और मस्त एकदम एयर कंडीशन स्पेस है तो वेदर का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. आपकी हेल्थ के बारे में सोच कर ये जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया गया था एंड आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि समझ में भी जो हेल्दी रहने की एक्टिविटीज हैं वो रुकनी नहीं चाहिए वेदर के नाम पे. बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दैट कि भाई वेदर बहुत ख़राब है यार, आई कॉन्ट गो फॉर अ वॉक राइट नाउ, आई कॉन्ट गो फॉर अ रन, आई एम वेटिंग फॉर विंटर्स. सो ये मेरे जैसे लोगों के लिए बच नहीं सकते हैं आप.
1: अब सुनिए

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

मिदा मूवी से बहुत ही कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 FM तनीषा आपके साथ मिदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड जस्ट रिमाइंडर फॉर यू इफ यू हैवंट फटाफट से जाओ फॉलो कर लो हमें सोशल मीडिया पे रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए यूट्यूब पर भी फॉलो कर लीजिए हम वी आर ऑन स्नैपचैट टिकटॉक एवरीवेयर ठीक है सब जगह फॉलो कर लो बिकॉज कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग यू वुड नॉट नो अबाउट इट एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस दैट ठीक है और उससे याद आया कि जितने भी लोग अल रियान में रहते हैं और उसके आसपास रहते हैं नो मोर एक्सक्यूजेस जब हेल्थ की बात आती है तो ठीक है क्योंकि फैल्कन फिटनेस अपना 7th ब्रांच ओपन कर रहा है कल अल रियान में हाईटेक जिम है बढ़िया वर्कआउट करो अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाले बेटे ठीक है कि यार अच्छा जिम नहीं है या फिर वहाँ पर ट्रेनर अच्छे नहीं है फील नहीं आ रही है वाइब नहीं आ रही है सब खत्म अब क्योंकि बढ़िया सा 7th ब्रांच ओपन हो रहा है फैल्कन फिटनेस का चेकआउट कीजिए और फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए हाँ जी मेंबरशिप ले लीजिए सेंडिंग श्रेया घोषाल की आवाज़ में झल्ला वल्ला फ्रॉम द मूवी इशक ज़ादे स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास

0: जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

दिल चाहता है मूवी से कोई कहे कहता रहे, अगर इस गाने के लिरिक्स ध्यान से सुने जाएं तो ये हर जनरेशन के लिए रेलेवेंट होगा आगे आने वाले कई सालों तक। You are listening to Radio Ola 106.3 FM, Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं। यहाँ पर 9:51 हो चुका है और मेरे जाने का वक्त हो चुका है मेरी जान। मिलेंगे अब सीधा संडे को सुबह 6 बजे। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, एकदम बढ़िया वीकेंड स्पेंड करना है, काम वाम का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? चिल करो, फ्रेंड्स फैमिली जिसके भी साथ वक्त बिताना है बिताओ, अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो डू दैट फॉर योर सेल्फ, ठीक है? सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। That is why I keep saying every time कि अपने लिए time निकालो, spend little time, you know, like 15-20 minutes भी निकाल रहे हो ना वो भी बहुत है, और उससे ज़्यादा निकाल रहे हो तो और भी बेहतर है। बाकी have an amazing weekend and अपना ख्याल रखिएगा, बहुत important है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM, जियो बिंदास।

यार शान जी की आवाज जब भी मेरे कानों में पड़ती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अलग दुनिया में पहुंच चुकी हूँ। मार्स वार्स में जो है उड़ रही हूँ, मतलब रेड प्लैनेट दिख रहा है आसपास। शान जी की आवाज इतनी ही खूबसूरत है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को मस्त बनाना जो है यही मेरा एजेंडा है। हाँ जी, अभी तक आप जो है पिछले कुछ दिनों से मुझे जबरदस्त इवनिंग पे सुन रहे थे, लेकिन अब हम आ गए हैं हमारे घर पे वापस, यानी लाइफ मस्त है में, और यहाँ पर आपकी लाइफ को एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश करूंगी। एंड यार देखो, मेरे साथ जो है ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे को ना अचानक से टाइम याद नहीं रह पाता है। तो अगर मैं आपसे बात करते करते लाइफ मस्ती की जगह जबरदस्त इवनिंग बोल दूं तो मुझे बच्चा समझ के माफ कर देना। बाकी आप हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो है वो मुझे जल्दी जल्दी से भेज सकते हैं 3311063 पर, ताकि मुझ में मोटिवेशन की एक लहर जो है वो दौड़ जाए, क्योंकि आज वीकेंड भी है। तो देखिए, एक्स्ट्रा फन करने वाले हम, एक्स्ट्रा मस्ती करने वाले हम, लेकिन आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से फोन उठाइए 3311063 पर मुझे मैसेज कर दीजिए हाय हेलो गुड मॉर्निंग। एंड अगर मेरे बारे में दो अच्छी बातें करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तब तक जो है आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वाले गाने जो है वो मैं लेकर आई हूँ। भाई तेरा स्टार है जे, आंखों से तूने 2.0 गाना जो है आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कोशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Solid 106.3 FM Gio Bendaz.
1: आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:11. दैट इज 10:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Hi everyone, I'm Arman Malik.
4: I'm number one.
3: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: अरिजीत सर, आप क्या ब्रेड पे सैडनेस लगा के खाते हो क्या? मतलब आपकी आवाज में इतना दुख और दर्द हर वक्त कैसे होता है? मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि कोई भी गाना जो है अरिजीत सिंह जी रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि यार वो दर्द नहीं आ पा रहा, एक काम कीजिए आप मेरे हाथ पे जो है चिमटी काट लीजिए, या आप जो है आप मुझे रबर बैंड से ऐसे पेपर फेंक के मार दीजिए, थोड़ा सा दर्द होगा मुझे तो गाने में और दर्द दिखेगा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कंसेशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, मेरा फोन जो है जानता है कि इस वक्त पे मैं जो है मौसम के मामले की बात करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो मेरा वेदर ऐप है उसे खोल देता है। पता नहीं कहाँ से ये फीचर जो है आ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फीचर जो है मुझे नजर आ रहा है तो एप्पल को जो है मतलब ऐसे खुले में इसको अनाउंस करना चाहिए कि हमारा फोन देखो ये भी कर लेता है, आपको जो है पहचान जाता है, वो आपकी आदतों को पहचान जाता है, चाहे आपके लव्ड वंस जो है वो इतना ध्यान दें या ना दें आपकी आदतों का, हमारा फोन पूरा ध्यान देता है। खैर बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। आज का इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस है एंड हाईएस्ट टेम्परेचर फिर से 40 के पार पहुंच चुका है, यानी 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी आज कोई भी टेम्परेचर 20 में नहीं है, मतलब 20s में नहीं है, 29-28 हो गया था बीच में लेकिन अब कोई चांस नहीं है। लेकिन देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कुछ दिनों की और बात है, फिर टेम्परेचर नीचे जाएगा, फिर हमें जो है बाहर घूमने में और ज्यादा मजा आएगा। वैसे जैसे जैसे वीकेंड आता है ना, वैसे वैसे मुझे लगता है कि मेरे गले की खराश जो है वो शुरू हो जाती है, मतलब पूरा वीक मैं ठीक रहती हूँ एंड वीकेंड जैसे जैसे आता है मुझे पता नहीं कुछ कुछ तो होने लग जाता है कि यार अब तबीयत थोड़ी सी ना डाउन लग रही है, थोड़ी सी ख़राब लग रही है, फिर एक दिन ना पूरा रिकवरी में लगता है, फिर बचा हुआ आधा दिन जो है वो चला जाता है काम करने में, तो फिर वीकेंड मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? 3311063 पर मैसेज कर दीजिए मुझे, और अगर इस पर नहीं बात करनी है तो मुझे सिर्फ हाय हेलो गुड मॉर्निंग भी बोल दो, वही काफ़ी रहेगा। फिलहाल जो है कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है रेडियो से, फिर जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कसूस के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jack Mankey power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minutes का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

आप मुझसे रिलेट करोगे अगर मैं ये कहूँ कि अभी रीसेंट पास्ट में जितनी यू नो सीक्वल्स आई हैं उनसे बहुत अच्छी जो ओजीज हैं, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो सबसे बढ़िया रहा है. एंड ऐसे बहुत कम होता है जिसमें सेकेंड पार्ट को मैं ज़्यादा अमेजिंग बोलूँ फर्स्ट पार्ट से. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर. मैं हूँ आपकी कस्टमर शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखिए यार, ये गाना जो है हमने इन्जॉय किया धूम मूवी से, एंड द ओजी धूम. तो मुझे धूम वन ही लगी है, मतलब धूम वन बहुत अच्छी थी, धूम टू जो थी वो ओके ओके थी, धूम थ्री इससे फिर मेरा मूड खराब होना जो है वो शुरू हो गया. एंड अगर अब धूम फोर आएगी तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसको देखने में, ठीक है. वैसे जो है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो आइए मैसेजेस में जो है गोते लगाते हैं. अस्मा जी ने बहुत ही क्यूट सी वीडियो भेजी है, एंड गुड मॉर्निंग कशिश का है, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अस्मा जी स्पेशली जो है कोई अच्छी सी वीडियो जो है वो हमें भेजती है. एंड अब बात कर लेते हैं मोहम्मद यूसुफ खान जी की. बड़े दिनों के बाद मैं इनका मैसेज पढ़ रही हूँ. इन्होंने मुझे सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम. एंड इनका कहना है कि वेलकम बैक कशिश, सिमरन जी आ गई. हाँ जी सिमरन जी जो है आज आपको ज़बरदस्त इवनिंग में जो है मिलने वाली है. एंड जहाँ ओके तो इनके साथ भी वही होता है जो मेरे साथ होता है कि ये काम करने लगते हैं एंड वीकेंड ख़त्म हो जाता है. देखिए सर ये तो क्या है, हम सबकी ही कहानी है, थोड़ा सा बारिश है थोड़ा सा पानी है. खैर वो दोनों ही यहाँ पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके. वैसे देखिए राफ्ता राफ्ता करके हम जो है वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना राफ्ता राफ्ता वाला जो है गाना इन्जॉय किया जाए. लेकिन ये जो राफ्ता राफ्ता वाला गाना है ये थोड़ा स्लो वाला राफ्ता राफ्ता है. ओके सो नमस्ते लंदन से, ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

0: हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

मध्य प्रेम की कथा, 2 किलोमीटर लंबा जो है इस मूवी का टाइटल था। एंड इसमें गाने इतने अमेजिंग थे, मुझे याद है जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना, तो उस साल जितने लोगों की शादी हुई थी इसी मूवी के सारे गाने उन्होंने अपनी रील्स पे लगाए थे। खुद मेरे 3-4 जो दोस्त हैं, मतलब बड़े, मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, उन लोगों की शादी हुई थी, उनकी भी रील्स पे एंड स्टोरीज पे हमने यही गाने लगाए थे एडिट करके। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिशन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को जो है मस्त बनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। एंड पूरी पूरी तरीके से मेरी बस यही कोशिश है कि आपकी लाइफ को मस्त बना दूँ। एंड देखिए, आज मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे क्योंकि आज वीकेंड है और जब मैंने के लिए आप खुश होंगे, राइट? वैसे देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को जो है दूर भगाने के लिए

0: रैंडम जो है अप्लायंस को एक मेल लिख दीजिए कि डियर टोस्टर, डियर टोस्टर, मैं जो है काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हूँ, मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, मेरी लोग जो है बात नहीं सुनते हैं ना, आपको जो भी आपकी मन की फीलिंग्स है वो पूरी उस मेल में लिखनी है। एंड या तो आप उसको खुद को सेंड कर दीजिए या तो फिर उसको ड्राफ्ट में डाल दीजिए। एंड जब आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को जो है लिख देंगे ना मेल पे, तो आपको अच्छा फील होगा। यस, एंड ये ध्यान रखिएगा कि आपको मेल का जो फॉर्मेट है वो मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब आप खुद को भेजेंगे एंड खुद जब आप रिसीव करेंगे वो मेल, तो पढ़ने में कितना फनी लगेगा ना, डियर टोस्टर आई एम राइटिंग दिस मेल। मैं सोच सोच के हंस जाती हूँ यार। वैसे मैं देखो आज ये ट्राई करने वाली हूँ, अगर आपको लगता है कि ये वर्क करेगा सो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। 3311063 पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए यार, अगर खुद को मेल नहीं करना है तो आप हमें भी व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स कि यार डियर टोस्टर या डियर रेडियो मेरी ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है यहाँ पे जो है आपको सोल्यूशन मिल जाए, और सोल्यूशन नहीं मिल जाए तो कोई सुनने वाला मिल जाए। देखो हम किसी को जज नहीं करते, बिकॉज हमारी लाइफ में खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि एक दूसरे को जज करने में क्यों टाइम वेस्ट करें। यस, आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए, मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूंगी। सो बस 3311063 इज द नंबर जहां पर आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो मिले ना मिले, लेकिन आपको जो है एक सुनने वाला इंसान जरूर मिल जाएगा, आपके दोस्त जो है आपको मिल जाएंगे। सो 3311063 जो है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप अपनी चीजें जो है भेज सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, अपने ऑडियो नोट भेज सकते हैं। बाकी रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बहुत ही अमेजिंग कंटेंट जो है वो हम डाल रहे हैं। तो उस पर क्या होता है कि आप जो है अगर उसे फॉलो कर लेंगे तो फिर आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, हंसी मजाक सब कुछ मिलेगा, साथ में इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी बहुत सारा मिल जाएगा। सो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। फिलहाल ऑल फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आरआर आपके रेडियो सेट्स पर, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Song of the Year.
2: Ye gana.
3: Here we go.

0: खत्म पैसा हजाम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
2: Ready? To learn?
3: Yes.
2: To play?
3: Absolutely.
2: To grow?
3: Maserati.
4: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
5: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
4: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना मोहम्मद यूसुफ खान साहब और मैं यही कह रहे थे कि यार आधा दिन जो है वीकेंड का वो चला जाता है नींद से उठने में, उसके बाद फिर चला जाता है साफ सफाई करने में, और फिर अगर थोड़ी बहुत एनर्जी और थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो फिर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि लुलु हाइपरमार्केट जाने का मौका मिलता है। एंड देखिए आप लुलु हाइपरमार्केट जाएंगे तो आप लिस्ट वाला सामान तो सिर्फ लेके वापस नहीं आएंगे क्योंकि इतने अमेजिंग ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, इतने अमेजिंग डील्स आपको मिल जाती है, तो कोई खाली हाथ क्यों वापस आएगा या फिर कोई जो है सिर्फ लिस्ट वाला सामान लेके क्यों वापस आएगा। लेकिन देखिए एक बहुत ही अमेजिंग बात मैं आपको बताने के लिए आ चुकी हूँ। मैं हूँ आपकी कसर शो, जो है आप मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे हैं, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए लाइफ ऑटोमेटिकली मस्त बन जाएगी जब आपको ये बात पता चलेगी कि लुलु मेगा डील्स जो है वो ऑफिशियली वापस आ चुके हैं, जहां पर आपकी जो है बहुत सारी सेविंग होने वाली है। इस 16 से लेकर जो है 19 सितंबर तक आपके पास मौका था जो है अमेजिंग वाले आइटम्स जो है यानी आपके फेवरेट आइटम्स जो है वो बेस्ट प्राइस पे खरीदने का। सो देखिए चार दिन का ये ऑफर था जिसमें से जो है दो दिन बीत चुके हैं, सिर्फ आपके पास अब दो दिन बचे हैं मेगा डील्स और मेगा सेविंग्स का जो है आप फायदा उठा सकते हैं। शॉपिंग लिस्ट जो है वो जल्दी से रेडी कर लो क्योंकि लुलू पर जो है ये शॉपिंग मेगा जो ऑफर है, मेगा जो डील है, ये बार बार नहीं आती है। सो इतना खर्चा क्यों करना है जब आपको रीजनेबल प्राइसेस पे आपकी फेवरेट चीज़ें मिल जाएंगी। सो लुलू मेगा डील्स 2026 पर जो है आइए, स्पेंड लेस कीजिए एंड सेव मोर कीजिए। बाकी आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Cool Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour।
2: सर क्या पर ये बात है।
3: Cool Song।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

यार जैसे जैसे हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे मुझे मेरा वार्डरोब जो है ऐसा लग रहा है कि यार किसी काम का नहीं है, थोड़ा खाली खाली सा होता जा रहा है। क्योंकि ना विंटर्स के या जो थोड़ा फॉल वाला टाइम होता है ना, उसके थोड़े से कलर्स अलग टाइप के होते हैं, फील थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉपिंग अभी से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं मैं अच्छे से फोटोज जो है उसमें बहुत बढ़िया दिख पाऊंगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्ट है, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक यू नो लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मस्त बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, फैशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है मेरी लाइफ का, तो इसीलिए आपको भी जो है थोड़ी सी फैशन की यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं देने के लिए आ जाती हूँ। सो आज जो है हम बात करने वाले कलर कॉम्बिनेशंस की, जो आप जनरली ट्राई कर नहीं रहे हो एंड आपको करने चाहिए। सो सबसे पहले तो बर्गंडी एंड ग्रे एक ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है जिसे जो है हमेशा लोग वो कर देते हैं यार कि यार ये तो क्या ही है, इतना कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन बर्गंडी एंड ग्रे सच में बहुत ही ज़्यादा शीक एंड रॉयल लगता है। उसके बाद अगर मैं ऑलिव कलर यानी ऑलिव ग्रीन और ब्लैक की बात करूं, सो ये भी एक सेफ ऑप्शन है अगर आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो। उसके बाद रस्ट ऑरेंज एंड क्रीम कलर, ये सच में इट्स क्रीम्स लग्जरी, सो एक बार जरूर से ट्राई करना। एंड ब्राउन और ब्लैक तो एक क्लासिक कॉम्बो है ही, साथ में अगर आप ब्राउन को लाइट ब्लू या पाउडर ब्लू के साथ जो है अगर पेयर अप करते हैं तो ये जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। एंड ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये जितने मेरे जो है लड़के लिसनर्स सुन रहे हैं यानी जितने मेल सुन रहे हैं, आप भी ये जो है कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है, आपको फिर से जानना है और कोई टिप्स चाहिए तो आप मुझे 3311063 पर आकर मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो फिंदास।

Radio Olive Park. Song of the Year.

आज ना मैं एक पर्सनल वन टू वन बात करना चाहती हूँ जितने भी बिजनेस ओनर मैनेजर या एचआर्स मुझे सुन रहे हैं उनसे. क्यों वीकेंड पे आपके एम्प्लॉयज जो है वो इतने खुश हो जाते हैं? क्यों इन्हें मज़ा आता है ऑफिस छोड़ने में, मतलब ऑफिस से निकलने में इतना क्यों मज़ा आता है, इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यार ऑफिस में ही एम्प्लॉयज को फन मिल जाए, मस्ती मिल जाए, मज़ा मिल जाए? वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसोशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. अब देखो यार, लाइफ मस्त एम्प्लॉयज़ की तो तब बनेगी ना जब ऑफिस में भी उन्हें उतना ही मज़ा आएगा जितना बाहर आ रहा है, या बाहर से ज़्यादा मज़ा आएगा. सो अगर आप एक मैनेजर हैं, एक यू नो बिजनेस ओनर है या फिर एचआर है, तो मुझे लगता है कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए रेडियो ऑलिव की टीम से, एंड हमें इनवाइट करना चाहिए आपको अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं हैप्पीनेस लाउंज, जहां पर फन फॉलिक मस्ती मजा होगा, गेम्स होंगे, बहुत सारी चटपटी वाली बातें होंगी आपकी टीम के साथ एंड आप ही के ऑफिस में. तो देखो यार, देरी किस बात की है, जल्दी से 3311063 पर आकर HL यानी हैप्पीनेस लाउंज मैसेज कर दीजिए. बाकी आपके मैसेज को देखकर आपके नंबर पर जो है हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी. सो बस जल्दी से अपनी टीम को रिजुविनेट करने के लिए जो है ये स्टेप उठा लीजिए. बाकी अमेजिंग वाले गाने तो आ ही रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो फिंदास.

0: क्योंकि लाइफ मस्त है.
1: In association with
2: Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.
3: While growing up, आप हमेशा ये सोचते हो कि खुशी जो है आपको पैसों से मिलती है, लेकिन फिर जब आप और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि यार पैसे तो कमा लेंगे, कभी कम मिलते हैं पैसे, कभी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जो एक इंसान के आपको प्रेज करने के बाद खुशी मिलती है ना, वो बहुत कम जो है देखने को मिलती है, एंड पैसों से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. आप कितने भी पैसे देकर ना अपनी तारीफ जो है वो ख़रीद नहीं सकते, एंड अगर ख़रीद भी ली तो वो ख़रीदी हुई अलग सी लगती है यार. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. लेकिन आप सबके प्यारे प्यारे जो मैसेजेस हैं वो मुझे कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना देते हैं. अब देखिए, प्रेरणा जी ने जो है मुझे एक बहुत ही क्यूट सा मैसेज जो है वो लिखा है कि हाई कशिश, होप यू आर डूइंग वेल, यू आर प्लेइंग सच ग्रेट प्लेलिस्ट टुडे, दीज आर एक्चुअली सम ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, एंड हॉनेस्टली डूइंग हाउस होल्ड चोर्स विथ योर रेडियो ऑन made everything so much easier and fun today. Finished everything so quickly and didn't feel lazy at all. बस यार देखिए, amazing गाने जो है चलाने का एक यही तो motive है कि हम जो है आप के एक चेहरे पर खुशी दे सकें, आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना सके बेसिकली. और इसीलिए अपनी बातचीत जो है वो मैं यहाँ पर जारी रखती हूँ सिर्फ आपको खुश करने के लिए. बाकी अगर आपके पास भी ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं तो उन्हें रोक के क्यों रखा है यार, इमोशंस को ना रोक के नहीं रखना चाहिए. जल्दी से मैसेज कर दो 3311063 पर. फिलहाल जो है अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

देखिए, अगर किसी चीज को लेकर आपको गलत फहमी है और आपकी वो गलत फहमी दूर हो जाती है, तो ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाकी सबकी भी गलत फहमी आप दूर करें। मैं भी वो गलत फहमी जो है वो दूर करने आ गई। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसरशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, ये तो हम हमेशा से सोचते हैं कि हम अगर कम खाएंगे या हम नहीं खाएंगे तो हमें जो है हमारा बॉडी फैट जो है वो कम हो जाएगा एंड हम वेट लूज कर लेंगे। लेकिन शायद ये बात आपको पता नहीं है कि स्टार्विंग यानी भूखा रहना जो है वो गट में एक बैक्टीरिया को आपकी स्टमक की इनर लाइन खाने पे मजबूर कर देता है, और इससे क्या होता है, ब्लोटिंग बढ़ती है, ब्रेन फॉग बढ़ता है एंड बॉडी जो है उसका क्लीनिंग सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को जो है जब वो ज़्यादा भूखा रहने लग जाते हैं ना, तो फैट लॉस तो नहीं होता है लेकिन मेमोरी लॉस ज़रूर होने लग जाता है। इसीलिए देखिए, अगर आप भूखा रहना जो है प्रेफर कर रहे हैं वेट लॉस के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, खाना इंपॉर्टेंट है लेकिन हाँ, मतलब हद में रह के खाना इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

करू, है ना, क्योंकि आप भी फन करने के मूड में होगी. सो देखिए, मैं हूँ आपकी कशिश शो, आप मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ से चलती हूँ और जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, सनस्क्रीन लगाते रहना, एंड कल जो है मुझे शाम को जो है 4 बजे के लिए टेक शो में जो है सुनने के लिए ज़रूर से आ जाना. वहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे मस्ती के मज़े के तड़के के साथ. फिलहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपने प्यारे लोगों का जो है बहुत सारा ख्याल रखो, और बाकी मुझे याद करते रहना और स्टे ट्यून रहना, कहते रहना जियो बिंदास.

जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ. ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू

लकी तेरी सुरमे दानी लकी तेरी हील गोरी लकी तेरी कुर्ती येलो लेंदी जड़ी पील गोरी लकी तेरी।

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंद।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई बहुत ही प्यारी बात आपके साथ जो है हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए बात बहुत सिंपल है। रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था और एकदम से जो है गुलजार साहब की एक रील आई, और गुलजार साहब की रील आती है तो हम क्या करते हैं, उसे बैठ के देखते हैं, कभी स्किप नहीं करते। तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई है, और उसमें यही बताया है कि हम किसी को सिखा नहीं सकते। जो भी टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, मेंटर्स हैं, ये लोग हमें सिखा नहीं सकते, ये हमें दिखा सकते हैं, एक्सपोज करा सकते हैं नॉलेज की ओर, लाइफ की ओर, ये सारी चीज़ें हमें दिखा सकते हैं बट सिखा नहीं सकते। सीखने की क्षमता जो है वो उस स्टूडेंट में, उस विद्यार्थी में, कि वो इसमें से कितना असिमिलेट कर सकता है, कितना सीख सकता है, कितना ले सकता है करके। और इससे मुझे एक बहुत ही फेमस मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग याद आया, जिसमें एक फादर जो है अपने सन से कहता है कि बेटा फोटोग्राफी सिखा नहीं सकते, सीख जरूर सकते हैं। सिमिलरली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखा नहीं सकते, सीख जरूर सकते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे छोटा सा एक चैलेंज मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है? अभी तक का जो पूरा दिन आपका निकला है, ठीक है, अभी तक का जो दिन आपका निकला है, उसको अगर एक वर्ड में समराइज करना हो या फिर एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना हो, तो आप कौन सा वर्ड चूज करोगे? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर। मैसेज करके बताइए मुझे एक शब्द में अभी तक के पूरे दिन को कैसे आप समराइज करना चाहोगे। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप मुझे मैसेज कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी हम क्रिकेट में सेंचुरी की बात करते हैं, फास्टेस्ट सेंचुरी की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिल में आता है वो है क्रिस गेल का और एबीडी विलियर्स का। क्रिस गेल का इसलिए आता है क्योंकि आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जो है उन्होंने लगाई है, और एबीडी विलियर्स का इसलिए आता है क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जो है उन्होंने स्कोर किया है। 31 बॉल्स में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है सेंचुरी स्कोर की थी 2015 में। और टी20 इंटरनेशनल में साहिल चौहान करके एस्टोनिया के एक प्लेयर हैं, जिन्होंने 27 बॉल्स में 100 स्कोर किया, वो भी साइप्रस के खिलाफ 2024 में। मगर आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में वो रिकॉर्ड किसके पास है? और वो रिकॉर्ड है दी वन एंड ओनली ब्रेंडन मैकुलम के पास। अब ब्रेंडन मैकुलम की मैं बात करूं तो भाई मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड्स की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी 54 बॉल्स में उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है सेंचुरी जो है कंप्लीट की। एंड न्यूजीलैंड के सबसे फास्टेस्ट टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले प्लेयर भी वही हैं, और इंडिया के खिलाफ इन्होंने 2014 में ये फीट जो है हासिल किया था। टेस्ट में मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन्होंने ही बनाए हैं, 107 सिक्सेस ड्यूरिंग हिज एंटायर टेस्ट करियर। और उसके बाद फास्टेस्ट वर्ल्ड कप 25 बॉल में 77 रन उन्होंने स्कोर किया इंग्लैंड के खिलाफ 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। और ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 2 टी20 इंटरनेशनल ODIs, तो यानी कि टी20 का सेंचुरियन जो है सबसे पहला इन्होंने ही स्कोर किया था। उसके साथ साथ आईपीएल का सबसे पहला सेंचुरी भी पहले ही मैच में इन्होंने ही स्कोर किया था। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Lulu Mega Deals are back, and this time it's all about bigger deals, better prices, and smarter shopping.
1: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
0: 4 days, mega deals, more savings.
1: So get your shopping list ready, because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
0: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
2: Speech dena aur baat kehna, dono alag cheeze hain. Speech खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द Qatar Talks 2026 कम्युनिकेट कनेक्ट एंड कॉन्कर
3: Hi there friends, this is DJ Suket. DJ Suket. You're listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Geo Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। अर्थ का जो डीपेस्ट नेचुरल पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप, जो है मरियाना ट्रेंच में। ये 10,984 मीटर्स डीप है, यानी कि ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर डीप है। मगर इससे भी डीप एक चीज है जो मैन मेड है। मैं बात कर रहा हूं बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोर होल। ठीक है, इसे बहुत ही पहले यानी कि 1970s के टाइम पे जो है रशिया ने शुरू किया था। एंड दिस इज द डीपेस्ट ह्यूमन मेड होल ऑन अर्थ। इसका जो डेप्थ है वो है 12,262 मीटर्स, यानी कि 12 किलोमीटर जो ये है डीप जाता है। ये कोला पेनिनसुला नॉर्थ वेस्टर्न रशिया में सिचुएटेड है, और इसकी ड्रिलिंग शुरू हुई थी May 24, 1970 में। ये जानने के लिए कि भाई एक्चुअली ये जो रॉक्स का लेयर है उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, थोड़ा एक साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो है ये काम शुरू हुआ था। और 1992 में कंप्लीटली सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, और इस एक बोरहोल का जो मैक्सिमम डेप्थ था वो पहुंचा था 1989 में। और एकदम एंड में इसका जो डेप्थ में इसका जो डायमीटर है वो है 9 इंचेस, यानी कि 23 सेंटीमीटर्स आसपास कुछ ही ये वाइड है उसके एकदम डीपेस्ट पॉइंट में। और डिस्कवरीज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिस्कवरी था कोई बसॉल्ट लेयर जो है नहीं दिखा। साइंटिस्ट को लगा कि जैसे डीप जाएंगे तो रॉक ग्रेनाइट से चेंज होके बसॉल्ट में बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। डीप डाउन तक वो ग्रेनाइट ही रहा, और बहुत ही डेप्थ में उन्हें फ्लोइंग लिक्विड वाटर मिला जो फ्रैक्चर्ड रॉक में फंसा हुआ था। उसके साथ साथ काफी इंटैक्ट एक माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन का फॉसिल उन्हें मिला जो 2 बिलियन ईयर्स पुराना था, वो भी उन्हें उस एक डीप अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन में जो है मिला। और हीट के बारे में साइंटिस्ट ने जो प्रेडिक्ट किया था वो गलत हुआ। उनको लगा कि 90 डिग्री के आसपास जो है वहां पे टेम्परेचर होगा, बट टर्नड आउट 180 डिग्री सेल्सियस था वहां का टेम्परेचर। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि कभी कभी नेचुरल ऑकरेंसेस से भी गहराई में इंसान की सोच और क्षमता जा सकती है, मगर वहां पे भी नेचर ही जीतता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। अब सुनिए।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक सुपर हीरो के बारे में बात करना चाहूंगा। वो सुपर हीरो का नाम है बैटमैन। ठीक है, बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, मार्वल के सुपर हीरोज हैं, डीसी के सुपर हीरोज हैं, मगर मुझे बैटमैन बहुत पसंद है। वो इसलिए है क्योंकि बाकी सारे सुपर हीरोज को अगर हम देखें तो उनमें कुछ ना कुछ सुपर पावर है। बैटमैन के पास एज सच कोई सुपर पावर नहीं है, मगर बैटमैन का माइंडसेट और टेक्नोलॉजी यूज करके बैटमैन जिस तरीके से क्राइम के खिलाफ लड़ता है वो काफी कूल लगा मुझे। और सबसे प्यारी बात बैटमैन के बारे में जो मुझे लगी थी कि यार बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एक चाइल्डहुड था बैटमैन का। बहुत ही छोटी उम्र में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, वो भी उसने अपने सामने देखा उस इंसिडेंट को। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, काफ़ी आइसोलेटेड एक लाइफ था उसका। मतलब एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिकल स्ट्रगल के बाद बैटमैन जो है बैटमैन बना। और बैटमैन का स्ट्रगल और भी प्यारे तरीके से समझने के लिए यू शुड डेफिनेटली चेक आउट बैटमैन सीरीज बाय क्रिस्टोफर नोलन। बहुत ही बढ़िया है वो सीरीज, तीन मूवीज है उसमें, आप तीनों देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपने ऑलरेडी देख रखी है बहुत बढ़िया, नहीं देखी तो जरूर देखेगा। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं,

0: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही प्यारी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, कई दफा हमने देखा होगा कि हम अपने पास एक बहुत ही स्पेशल जोड़ा कपड़ा जो है रखते हैं, या फिर स्पेशल सेट ऑफ कटलरीज रखते हैं कि कुछ स्पेशल डे आएगा तो हम इसको यूज करेंगे, या फिर उस कपड़े को पहनेंगे, या फिर इस कटलरी सेट को यूज करेंगे। मगर मैं पूछता हूं कि भाई एक स्पेशल मोमेंट का इंतजार क्यों कर रहे हो? जो मोमेंट है हमारे पास उसे स्पेशल बनाओ। कभी कभी लाइफ में अपने नॉर्मल मोमेंट्स को भी स्पेशल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम नहीं बनाएंगे अपने मोमेंट्स को स्पेशल तो कौन बनाएगा? और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और कल मैं ऐसे तनिषा के साथ बैठे बात कर रहा था। तो यूजुअली हमारा जो बातचीत का तरीका है वो या तो फनी बैंटर चलता रहता है या फिर कुछ ना कुछ हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, मगर सरप्राइजिंगली कल काफ़ी एक बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो है शुरू हुआ था। तो तनिषा मुझे बता रही थी कैसे वो कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही थी, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। सडनली उसे रियलाइज़ हुआ कि प्रेजेंट के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ, और एकदम से मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि सही बात है कि प्रेजेंट के बारे में तो हम बहुत कम ही सोचते हैं, इस मोमेंट में तो हम बहुत कम ही जीते हैं। आगे आने वाले दिन क्या करना है, पीछे जो छूट गया उसके बारे में सोचते रहते हैं, मगर अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है उसके बारे में तो ध्यान ही नहीं दिया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सब अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, एंड दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट वेयर यू हैव टू थिंक कि यार लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड अभी में ज़रा फोकस करते हैं, इस मोमेंट में जीते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कॉन्टेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
0: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ
3: लगा और हो जा रिचार्ज
0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: parlar de um garapure desco.
1: लेकिन दिल नहीं लग रहा, पूरा दिल जो है ना वो होता ना कि आपकी छुट्टी जब खत्म हो जाती है तो आपका जहन जो है वो अटका रहता है फैमिली के साथ और आप सैड फील करते हो, वो वाली सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज होने वाली, क्योंकि 4 घंटे

कैसे गुजरे मेरे बगैर जो आपके दिन थे और आज का दिन आपका कैसा बीता। 3311106 पर व्हाट्सएप कर दो।

और वे भी बात तो ये है कि नहीं है, दीवाने दो है हम आपके, अब पागल तो सबको बना देंगे। बड़ा फटाफट से अपने दिन के बारे में, आपके वीकेंड के प्लान्स के बारे में, कैसी रही मेरी छुट्टी में आपको वापस लौट के बताऊंगी। अभी तो आए हैं बेबी, रुक जा बेबी, सांस तो ले ले। पांच मिनट नहीं, सीधे छह मिनट हो चुके स्टूडियो की घड़ी पे। जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: नमस्कार मैं हूँ आर माधवन
5: हाय दिस इज विपाशा बासु
6: हाय आई एम राजकुमार राव
7: हाय मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा
8: हाय दिस इज दिशा पार्डी
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM
3: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 26. Communicate, connect and conquer.
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
10: सिमरन के साथ
11: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

ऐसे लगता है पूरे वीकेंड की वाइब इस गाने में आ गई है। सो अगर आपको अभी तक वाइब नहीं आ रही थी वीकेंड वाली, तो भी मैं हूं ना, आई रहेगी आपको। क्या बोलते हो, काउंटडाउन शुरू करें? 3, 2, 1 एंड गो।

0: शर्मा तो आज मैं रही हूँ यार। क्यों बताती हूँ ना यार। इसलिए रही हूँ, इतना ब्लश में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए कि आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया और थैंक यू सो मच यार, इतना ही प्यार चाहिए और क्या चाहिए यार।
1: तो सिमरन, हाउ आर यू?
0: गुड,
1: वेलकम करते हैं हम आपका दिल की था गहराइयों से। आप आई हैं, आपको बहुत मिस किया, आपकी आवाज को बहुत मिस किया सिमरन। वेलकम करते रहा। और सुनाए, घर में सब ठीक ठाक था? आप भी ठीक ठाक हो?
0: बिल्कुल बढ़िया,
1: सब अच्छा चल रहा है।
0: थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट टाइम जो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन करके फिर आप जो है वो वॉइस नोट रिकॉर्ड करेगा, और जितने मुझे आप लिखित में मैसेज भेज रहे हैं, लिख लिख के भेज रहे हैं, उसमें उतनी फील नहीं समझ लगेगी दोस्तों। आप मुझे वॉइस नोट भेजो जो आप मुझे बता रहे हो कि आपने मुझे कितना मिस किया, इतने फूल दिल बना रहे हो, तो आपकी जबान से सुनना चाहती हूँ मैं। 3311063 पर 5:22:30 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सो आप लोग जो पूछ रहे हो कि मेरी छुट्टी कैसी रही, बहुत बढ़िया रही छुट्टी यार। हमेशा यही होता है कि फैमिली के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो वो बढ़िया ही होता है यार। और हर बार क्या होता है कि जब भी मैं जाती हूँ कहीं ना कहीं ट्रैवल जो है वो मेरी फैमिली वाले मुझे ज़रूर करवाते हैं क्योंकि टाइम नहीं लगता ट्रैवल करने का। और मैं बात करूँ मेरी दीदी जीजू की, वो तो बैग पैकर है, वो तो हमेशा ट्रैवल ही करते रहते हैं। सो मैं इस बार सिक्किम घूमी, दार्जिलिंग गई थी, गैंगटॉक गई थी, बहुत सारी बारिश देखी, पहाड़ देखे। जैसे कि मैं छुट्टी पे जाने से पहले आपको बोल रही थी ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है पहाड़ों में जाने का, बारिश देखने का, वो सारी फील जो थी वो मैंने ली और बहुत सारी बारिश भी देखी। और अहमदाबाद भी ऑफकोर्स गई थी, अपना घर है उधर। सो कुल मिला के मेरी छुट्टी एकदम ऑसम रही।

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: बिरयानी वैली बाय बाय स्लैब्स इंस्टेड ऑफ एब्स नॉट फॉर लॉन्ग फाल्कन फिटनेस इज लैंडिंग इन अल रियान September 18th, 7 p.m. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: हाँ जी, इसीलिए मैं मिर्ची खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है पानी किसी ने देना नहीं है।
1: आज पूरे चार चांद लग गए आज रेडियो ओलिप पे। सिमरन जी आप आ गए रिटर्न, तो
0: अरे
1: क्या ही कहना, और इतने मजे आ रहे हैं रेडियो ओलिप आपके बगैर सुना था, और आपका आवाज सुन के बहुत मजा आ रहा है।
0: थैंक यू,
1: एंड ऑब्वियसली वी मिस यू लॉट, बहुत बहुत बहुत मिस किया आपको। आप मजा आएगा रेडियो ओलिप में। आपका होस्टिंग, आपका आवाज,
0: थैंक यू।
1: और कैसे रही आपकी छुट्टी, और कैसे रहे आपके घर वाले सब? सबको सत श्री अकाल, प्रणाम मेरा और
0: आपको पता ही कि हमेशा ही अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज ना, मैं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती फ्लाइट में। जब आप होते हो ना, आपको पता है कि आपको टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे अपना जो है मोबाइल एक साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि वैसे आप फ्लाइट मोड में डाल के यूज कर सकते हो। भाई एक बंदा जब लैंड होने वाले है वीडियो कॉल पे लगा हुआ है यार, एक सेकेंड नहीं लोग रुकते हैं। भाई क्यों करते हो यार? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है ट्रैवल के टाइम पे, वो सारी फॉलो करो यार, फॉलो माय फ्रेंड।
2: तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया।
0: समझ नहीं आया।

0: listen to my songs on 106.3 Radio Olive. Jio Bindas.
1: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network. I'm in number one, Radio
2: Olive. भाई इतना प्यारा गाना है कि मतलब आपको पता ही है मुझे सारे रोमांटिक गाने बड़े सही लगते हैं यार. ये गाना उसमें से है. और अगर मैं कभी दर्द भरे गाने सुनूं भी ना तो उसके पीछे का रीजन मत ढूंढना, क्योंकि मैं मजे से सुनती हूँ दर्द भरे गाने. अब मैं वेट थोड़ी करूंगी दर्द वाले गाने कि मेरी जिंदगी में कुछ घटे.

0: ਹਾਂਜੀ एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं और आप लोगों के एक नंबर मैसेजेस आ रहे हैं यार बैक टू बैक कि आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया।
1: हेलो सिमरन जी, वेलकम बैक। आपका टूर तो बहुत अच्छा था, आपको तो मजा आया ही आया, हम लोग को भी मजा आ गया। आप ऐसी ऐसी जगह पे गई और हमने आपको बहुत मिस किया। रियान ने भी
2: मिस किया।
0: अरे यार थैंक यू सो मच, इन्होंने अपने बेबी की फोटो भी भेजी है। यार आप लोग कितने क्यूट हो यार। और भी बहुत सारे वॉइस नोट्स हैं, धीरे धीरे करके मैं शेयर करती रहूंगी। एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि लिखने की जहमत मत कीजिए, इस तरह से अपनी आवाज़ सुना के मुझे बताइए। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। अब आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो तो मैं भी आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन लुलू भी आपसे बहुत सारा

0: रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।

मुश्किल। सुन रहे थे 6:05 मिनट 40 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर

0: में पड़े रहना अच्छा लगता है यार। 6:10 स्टूडियो की घड़ी पे एंड आप लोगों का जो प्यार, क्या करूं यार, फिर से राइम कर दिया यार।
1: Yes, Simran ji, welcome back to Qatar.
0: Thank you.
1: Hope you enjoyed the holidays.
0: Yes.
1: And the holidays might have gone in very speed. Okay, once again, welcome back, Philip here.
0: Thank you so much, Philip ji. और मौसम की कहना है, देखो यार, मैं पहाड़ देख गई हूँ, ठंडी देख गई हूँ, बारिश देख गया हूँ, लेकिन अभी कतर का वेदर चेक करते हैं। मौसम जी, वेदर कुछ ऐसा है कि देखो दिन जो है वो बहुत सुहाने होने वाले, हम सबको ही पता है अभी के लिए 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 38 डिग्री सेल्सियस ही है। लोएस्ट टेम्परेचर जो है आज का 29 डिग्री सेल्सियस होगा एंड ह्यूमिडिटी 35% है एंड विंड जो है 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। रफ्तार से ये वेदर बस बीत जाए, इस देखो सेप्ट तो अभी आधा से ऊपर का हो गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ओह माय गॉड, मजे आ जाने इस मौसम में आपको, है ना। अभी फिलहाल माहौल चेंज होने वाला है इस गाने के साथ, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कर के, दे रही है जियो बिंदास। आई नो राइट,

0: जैक मैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मदुराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बेटों को छोड़ के सिमरन कौर पे कॉन्सेंट्रेट करो यार, क्या बात कर रहे हो। लेकिन लिखित में प्यार मत दीजिए, अगर आप वॉइस नोट भेजेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि छुट्टी के बाद जब मैं वापस आ चुकी हूँ तो कितना मिस किया यार।
1: हाय सिमरन, वेलकम बैक।
0: थैंक यू जी।
1: दिस इज टिक्कू ददलानी हियर। वी रियली मिस्ड यू। I hope you must have enjoyed your vacation.
0: अरे मजे कर लिए मैंने।
1: You've been thus and welcome back again.
0: Thank you so much यार, और थोड़ा सा मतलब 1.5-2 किलो बढ़ा के आई हूँ मैं वेट अपना, क्योंकि बहुत खाना हुआ यार। जब आपको पता है कि आप घर जाते हो तो मतलब घूमना फिरना अपनी जगह है, लेकिन ये खाना जो है वो मतलब दुगना तिगना जो है वो हो जाता है फैमिली के सामने। आप ये बोलो कि ओ मेरे को आइस अमेरिकानो चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मेरे को आइस अमेरिकानो जो है वो मैं पिछले 2 दिन में मैंने पी है और मजा आ गया यार। वो भी बहुत था कि मैं 3-3 टाइम चाय पी रही थी, वो भी मजे का टाइम था, लेकिन ये अभी भी मजे का टाइम है। ये तेरा मेरा मिलना। आप लोगों के वीकेंड के क्या प्लान है मैनू भी दस दो 3311063 पर।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: Pilipinas number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Lulu Mega Deals are back. And this time, it's all about bigger deals, better prices, and smarter shopping.
2: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prizes on selected items at Lulu.
1: 4 days, mega deals, more savings.
2: So get your shopping list ready, because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
1: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
3: Jab mil sakta hai aur bhi zyada, to fir wahi regular recharge kyun?
4: Apne hala number par ये ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
3: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
4: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
3: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
5: कॉलिंग ऑल विजनरी ब्रांड्स एंड बिजनेस ओनर्स इफ यू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन देन योर बिगेस्ट स्टेज इज रेडी
6: अलशर्क मीडिया मैनेजमेंट प्राउडली प्रेजेंट्स द ग्रैंड थर्ड एडिशन ऑफ किड्स एक्सपो कतर 2026
5: एट क्यूएनसीसी हॉल नंबर 5
6: दिस इज योर अल्टीमेट चांस टू पुट योर ब्रांड इन द स्पॉटलाइट एंड कनेक्ट डायरेक्टली विद थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज
5: फ्रॉम ब्रेकथ्रू टॉयज टू एजुकेशनल Services. Showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
10: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: करने का मौका किथे देनी है वैसे। ये मैंने थोड़े दिन आपको जरूर दिया था, 20-25-22 दिन। मेरा मैथ्स वीक है तो मुझे याद नहीं मैंने कितनी छुट्टियां ली थी। सो या 6:29 5 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे और आप लोगों के मैसेजेस। यार मैं क्या करूँ यार।
1: हेलो सिमरन, हाउ आर यू। मैं आपकी लिसनर निताशा।
0: हाय निताशा,
1: तो सबसे पहले तो वेलकम बैक आपको और मुझे भी, क्योंकि हम साथ साथ आए हैं, बस थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। सो वेलकम बैक, सुन के आपको अच्छा लगा।
0: थैंक यू।
1: और सही कहा आपने, छुट्टी जाओ और वेट ना बढ़े। सच में वेट बढ़ गया है। और परांठे जो खाए हैं हम पंजाब के हैं, तो सुबह नाश्ता तो परांठा का तो होना ही था।
0: करेक्ट।
1: तो गेन भी कर लिया है, वापस काम पर भी आ गए हैं। अब सब कुछ फिट करना है, अपने आप को फिट करना है, अपनी हेल्थ को फिट करना है और काम बहुत ज्यादा करना है। सो जियो बिंदास।
0: थैंक यू सो मच निताशा, और आई होप आपने भी एंजॉय किया जिस तरह से आपके मेरे मैसेज पे भी बात हुई, इन्होंने बहुत एंजॉय किया। कोई बात नहीं यार, फिट विट तो हो लेंगे अपन, खा पी के मस्ती करके छुट्टी से जो है वो वापस आ चुके हैं। अब हम वो होता ना न्यू ईयर से पहले वाला फिटनेस, वो वाला फॉलो करेंगे। एक काम कर, क्या कहूँ,
2: मुझे प्यार प्यार है तुझी से मेरे यार यार है।
0: I mean it यार। और ये गाना मैंने इंडिया में सुन सुन के घिसा दिया। बस थोड़ी देर में ये अल्फाज आएंगे आपके पास, उससे पहले थोड़ा आहू आहू आहू कर ले।

0: Sunte în number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपने नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल स्लो कुक्ड मंडी परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी नो नॉइस नो ड्रामा जस्ट सी फूड डन राइट बीबीक्यू फिश क्रैब्स प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस सर्व विद प्राइड दानादल पहाड़ द अल्टीमेट Three adventure. Souk waqif alcohol.
4: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026 communicate connect and conquer
5: iske swag pe munde jaate hain dil haar ke ladki ko pasand hai kadak chai malai maar ke to bhaiya banaiye apni evening ko zabardast gadar ki number 1 rj
6: rj simran ke saath
7: Zabardast evening. Make your drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: ये क्या खाने का नशा है यार.
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
2: ये बात है.
0: यार ये जो बुरीटो होता है, आपको पता है बुरीटो काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसमें बहुत सारी फिलिंग जो है होती है. इसको आराम आराम से ही खाना चाहिए, धप धप धप करके नहीं खाना चाहिए. अब आप सुनेंगे धप धप धप क्या होता है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ. बस उतना ही काफी होता है, ठीक है. वर्ड में नए नए ईजाद करती रहती हूँ. सो 4th August को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बुक हुआ है. एक बंदी ने ये जो बुरीटो है उसको कितनी देर में फिनिश किया, 30.75 seconds में उसने फिनिश किया. इससे पहले एक रिकॉर्ड था 31.47 seconds का बना हुआ था, लेकिन उसने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. भाई साहब क्या अलग अलग लेवल के रिकॉर्ड रहते हैं, ऐसा भी कोई रिकॉर्ड हो सकता है वो भी नहीं मुझे पता था. उसने एक और रिकॉर्ड जो था वो भी सेट किया था, जिसमें एक मिनट में कितने ज़्यादा चूरोस जो है वो आप खा सकते हो. चूरोस को चॉकलेट में डिप करके खाने का मज़ा ही आ जाता. खैर आपके मुँह में पानी आ गया, वीकेंड पे आना बनता है यार, खा लेना. सो एक मिनट में 8 चूरोस जो थे वो खाए थे. माय गॉड यार क्या ही चल रहा है लाइफ में. आप बताओ वीकेंड के टाइम पे आप क्या खाने वाले हो, अपने आप को किस तरह से ट्रीट करने वाले हो, क्या ट्रीट देने वाले हो खुद को. 3311063 पर बताओ यार. हैप्पी वीकेंड. और एक गाना जो कि मैंने सुन सुन के घिसा दिया है, पेशे खिदमत है.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah,

0: mega deals are back. And this time, it's all about bigger deals, better prices and smarter shopping.
1: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
0: 4 days, mega deals, more savings.
1: So get your shopping list ready, because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
0: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
2: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan. September 18th, 7 p.m. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
3: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं. यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा.
4: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा. रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज.
3: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें. धरोहर मिस मत करना.
5: यू आर लिसनिंग टू Radio Olive 106.3 FM.

जी गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। लेकिन मैंने उसको रीचेक किया, लेकिन ये चीज जो है वो शो हो रही है। एक ताइवान में एक बंदा था, वो डेंटिस्ट के पास गया और उसको ना दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने जब देखा उसके दांत के अंदर जो उसका जो विजडम टूथ था ना, उसके अंदर जो था वो जो गुआवा होता है ना उसका बीज था, वो स्प्राउट हो रहा था। लाइक सीरियसली माय गॉड, वो बचपन में बोलते थे ना कि अरे बीज मत खा अंदर वरना पेड़ उग जाएगा। भाई साहब ये बात पहले मुझे लगा यार नहीं है मजाक है, लेकिन एक्चुअली सही है। लेकिन कितना गंदा था, ब्रश नहीं करता था क्या, साफ नहीं करता था क्या यार पौधे।

0: चाहिए।
1: बेटा ब्रश नहीं करोगे तो कैसे मिलेगी मिसेस खिलाड़ी? दांत के अंदर पौधे उग रहे हैं।
2: ये जियो फिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Hi, I'm Suhali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets, and department stores where the world comes to shop.

0: आप लोगों से मुलाकातें वैसे तो नहीं होती है, लेकिन मैसेजेस के थ्रू जो बात होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग जो ना वॉइस नोट भेजा करो, तो उसको सुन के एटलीस्ट मुझे और ज्यादा एहसास होता है कि अरे यार हम एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल सही है यार, लेकिन इश्क इश्क के चक्कर में कभी कभी जो है वो कुछ हदें पार हो जाती हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: वो हद पार है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो है डिसरिस्पेक्ट। क्या होता है कि कभी कभी जब आप दोस्ती होती है आपकी या फिर आप पार्टनर्स होते हो, है ना, सो हंसी मजाक में डिसरिस्पेक्ट जो है वो कभी कभी चलती है, तो आप बातों को सीरियसली नहीं लेते हो। लेकिन जब आपकी डिसरिस्पेक्ट जो है वो एक दोस्ती में या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी डिसरिस्पेक्ट आपकी वो होने लग जाए कि आप सामने वाले की केयर कर रहे हो लेकिन आपको बदले में डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन सामने वाला आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका टाइम सही नहीं चल रहा या फिर वो गुस्से में है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ही होती है। तो आप सामने वाले को समझा दीजिए अगर आपका गहरा रिश्ता है उसके साथ, लेकिन अपॉलोजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ना हो अगर आपको रिश्ता संभालना है। वरना अगर किसी के साथ आपका रिश्ता गहरा नहीं है तो जाने दो यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जी।
1: अब सुनिए

0: लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: कॉकरोच की बात होती है ना तो हमेशा ये बात करते हैं कि लड़कियां जो है वो कॉकरोच से बहुत ज्यादा डरती हैं, लेकिन लड़के भी डरते हैं। जापान के एक बंदे ने ये चीज दिखा दी, 2023 की बात है, मुझे अभी पता लगी है कि बंदे के घर में कॉकरोच था, उसको कॉकरोच से इतना डर लगा कि उसने स्प्रे जो थी कॉकरोच को मारने वाली वो बहुत ज्यादा छिड़की और समहाउ आग जो थी वो लग गई और पूरा घर उस चक्कर में जो था वो जल गया। देखो बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन लड़के भी कॉकरोच से डरते हैं यार। ऐसी तो बात है नहीं है कि सिर्फ लड़कियां डरती हैं।
1: ऐ मेरे हम सफर एक सराय इंतजार।
0: वेरी ऑनेस्ट, मुझे कॉकरोच से कभी डर नहीं लगा, बट वो जो वियर्ड हरकतें करता है ना, किधर से भी उड़ के किधर भी बैठ जाता है, कैसे ढक ढक ढक करके भाग जाता है, वो मुझे उससे थोड़ा सा अजीब लगता है। अदरवाइज कॉकरोच से ऐसा कुछ डर वर नहीं लगता है मुझे। बहुत दिन से नेम गेम नहीं खेला, वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए तो तैयार हो जाइए।

0: Lift, 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 26. Communicate, connect and conquer.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: दिखता है।
1: वाह क्या लिरिक्स है। सिमरन कौर है तुहाडे नाल। बहुत दिन से यार हमने नेम गेम नहीं खेला, तो फिर आज हो जाए। तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग, ठीक है ना, सबको अपना अपना नाम मुझे अब लिख के व्हाट्सएप करना है 3311063 पर, ठीक है। तो कभी कभी होते हैं ना, हमारे कुछ साइलेंट लिसनर भी होते हैं कि सुन रहे होते हैं, बोलते हैं हम कभी मैसेज नहीं करते पर हम सुनते हैं। आप अपना नाम बस लिख के भेजिए, मैं आपका नाम बोलूंगी 3311063 पर। चलिए क्विकली अब मैं आप लोगों के नाम बोलने लगी हूँ। संजय जी हमको कुवैत से सुन रहे हैं, यासिन जी थैंक यू सो मच, निताशा जी थैंक यू सो मच, रवि जी थैंक यू सो मच, वाहिद अली जी थैंक यू सो मच, इमाद जी थैंक यू सो मच, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, ददलानी साहब थैंक यू सो मच, विनायक जी, फिलिप जी थैंक यू सो मच, नबी जी थैंक यू सो मच, तनवीर जी थैंक यू सो मच, बिलाल जी थैंक यू सो मच, मिशेल जी थैंक यू सो मच, समीर जी थैंक यू सो मच, आसमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद जी थैंक यू सो मच, संदीप जी, नईम जी, महबूब जी, हाय सांस से चढ़ गई, खेमराज जी थैंक यू सो मच, श्रीनिवास जी थैंक यू सो मच, जुनैद जी थैंक यू सो मच, जुहर रहमान जी थैंक यू सो मच, अदील भट जी थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ दोस्त नाम लिख के भेजो, हाय हेलो नहीं चाहिए मुझे क्योंकि उसका कोई मतलब बनता नहीं है। शरण्या जी, अविशी जी, श्रुति जी, विपिन जी थैंक यू सो मच, ये सब इकट्ठे मिलके मुझे सुन रहे हैं। हुजाइफा जी थैंक यू सो मच, कह रही हैं कि मेरी तरफ से आपको वेलकम है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। हाजरा जी थैंक यू सो मच, अदील हमजा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जुआ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिख के भेजिए 3311063 पर। अगला गाना शुरू होने वाला है। आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: सत श्रीकाल जी मैं हाँ हरभजन मान
4: भजन मान

0: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ.
3: Zabardast evening. Make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: सोनियों की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। जब मैं इंडिया गई ना तो इंडिया जाके आपको जो है वो आदतें खराब करती है। देखो खाने पीने की आदतें तो लगी है, मीठा मैं बिल्कुल ही बीच में छोड़ गई थी, मतलब कभी कभी मैं खाती थी, वो मीठा खाने की मेरी आदत लगी। और एक आदत लग गई है भाई साहब, बिग बॉस देखने की। यस, बिग बॉस सीजन 20 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने ना सिद्धार्थ शुक्ला के बाद वाला, उसके बाद मैंने कोई भी बिग बॉस जो था वो देखा नहीं। बीच में एक आध कोई एपिसोड देखा होगा किसी का, लेकिन इस बार मैंने स्टार्टिंग से जो है वो देखना स्टार्ट किया। और आई डोंट नो सो इसमें कौन कौन है, मैं आपको बता देती हूँ अगर आप नहीं देख रहे हैं। सो मैरी कॉम है, इसमें बॉक्सर है, माही विज है जो कि एक टेलीविजन एक्ट्रेस है, कनिका मान है, एंड आसिफ है, आम्रपाली, अर्शिफा, ईशा रिखी, कुशाल जिसको गुल्लू भी बोलते हैं, मेरा फेवरेट है यार वो, एंड लव गिल है, उदिति, अमन गांधी, बहुत सारे लोग हैं। सो समहाउ मुझे चस्का लग गया है इसको देखने का और मेरा इतना मन हो गया, मतलब इंडिया में जैसे ही मतलब 9 बजते थे मैं इसको देखना जो था वो स्टार्ट कर गई थी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस बार का बिग बॉस जो है वो देखना स्टार्ट किया है? सो जैसे कि मैंने बोला कि इसमें से जो गुल्लू है वो मेरे फेवरेट हैं, एंड कनिका को बहुत सारे लोग हेट करते हैं, बट फॉर सम रीज़न मेरे को कनिका मान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। मैरी कॉम बड़ा आराम से अपना जो है वो खेल रही है। ईशा रिकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि वो बादशाह की जो है अभी वो एक्स वाइफ जो है वो रह चुकी है, जिनकी 5 महीने ही शादी चली, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। सो या काजी तौकीर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बट उतना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं, उनकी हरकतें थोड़ी सी अलग हैं। लेकिन येस ऑफकोर्स जो एक शो आया था जो गुरुकुल फेम था जिसमें उन्होंने अरिजीत सिंह को हराया था, तो अरिजीत सिंह पहली बार बिग बॉस देख रहे हैं और काजी तौकीर को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो आप मुझे बताइए कि आप देख रहे हो क्या बिग बॉस। सिमरन कौर आपके साथ, रियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: जैक मैन की पावर पैक रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

कभी कभी ना आपकी फिल्म जो है ना कुछ छूट जाती है और अच्छी वाली फिल्म छूटती है और आप सोचते हो कि यार ये फिल्म आपने पहले क्यों नहीं देखी। ऐसी जहां पर आपको रोना आता ही आता है और मैं तो आपको पता है कि क्राइम पेट्रोल देख के भी रो लेती हूँ। सो वहां पे एक सीन चल रहा है जहां पे मतलब मेरे को बहुत तगड़ा वाला रोना आ गया और ऐसे टाइम पे एयर होस्टेस आती है, ठीक है, और वो लेके आती है खाना। मेरे को समझ नहीं लग रहा मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं और भाई साहब मजा आ गया। अगर आपने होम बाउंड फिल्म नहीं देखी है प्लीज देखिएगा, बहुत ही प्यारी फिल्म है यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह। गुलराज सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

चलो जी 20-22 दिन की छुट्टी के बाद आज ये जो 4 घंटे अपने थे ना जबरदस्त इवनिंग्स के, बड़ा मजा आ गया यार। सिमरन कौर आपके साथ और आप लोगों का मैसेजेस के थ्रू इतना सारा प्यार मिला, इतने सारे मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच यार। चलो हैप्पी वीकेंड, वीकेंड को एंजॉय करो और सैटरडे शाम को फिर से 5 बजे होती है आपसे मुलाकात। बस अपना ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा, स्ट्रेस नहीं लेना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी तरह दुखाओ ना। एक्चुअली ये जब बड़े होते हैं ना, एडल्टिंग होती है ना अपनी, तब समझ लगता है कि इन लाइनों का बहुत ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है इन लाइंस की। बस खाओ पियो ऐश करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को हर्ट मत करो, ठीक है? कादे भी दरवाज़ कर दे रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो।

चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाना, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाना, जो भी बोला वो हंस से निभाना, तुझे चाहता तुझे चाहता, चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाना, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाना, जो भी बोला वो हंस से निभाना।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम यू आर लिसनिंग टू क्लब ऑलिव

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.